दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। ओ लाल मेरे, ओ लाल मेरे। दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर ईशा भाग कलंदर। ओ लाल